0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: हर वेले हुंदा नी इंसान यारों माड़ा

तेरे जैसा किसी ने कहीं आज तक कोई देखा नहीं, तुझको पा लेने की अब किसी हाथ में कोई रेखा नहीं। तेरी आंखों का साहिल ही तो मेरी मंजिल है, तू मिल न मिल। तेरे होठों का तिल मुस्तकिल दिल का कातिल है, तू मिल न मिल। सारी दुनिया इसी सोच में ही मगन है कि तू कौन है, शाहजादियों को भी तुझसे जलन है कि तू कौन है।

हो तुम मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।

चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एट योर सर्विस टेक योर टाइम शॉरी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल देती मुझे विंडो सीट खुद लेती आ जब भी होती लो तू मेरा नंबर कर डाल मैं हूँ तेरे साथ साथ तू है मेरे संग साथ तेरे साथ टाइम की खबर न लगे किसी भी चीज में कसर न लगे मांगू दुआ यही नजर न लगे बेबी ऐसे है मत कर हमें क्या मत तू मुझको मिली है ये है मेरी किस्मत।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Where culture lives, this is CJMR 1320, the voice of the city.
2: कितना प्यार है मुझे तुझसे, कैसे बताऊं तुझे। तेरी यादों से जो टीस उठती है दिल में, उसे कैसे दिखाऊं तुझे।

तुम्हारी याद में आंसू बहाना दिल की दीवानगी है। तुम्हारे दूर जाने के फैसले की वजह से जिंदगी अब जिंदगी नहीं, सिर्फ आवारगी है।

करोगी, ये बात याद करोगी जब दूर चली जाओगी, बहकने दे मन को और कितना समझाओगी, तड़पोगी जब रेगिस्तान में प्यास लेकर आओगी, कहाँ इतनी प्यास लेकर जाओगी, पीछे मुड़कर देखो तुम।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: अगली बार माँ पूछेगी तो कह देना मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है.
2: तुमने सारी दुनिया को पढ़ लिया है, अब देखना है मुझे कितना पढ़ सकते हो.
1: पर हाथों की लकीरों में तारों को सजा हुआ पहली बार.

क्या हमारे किस्मत में ही इतने बड़े भूकंप को जन्म दिया है। जो प्यार जिंदगी दे सकता है, क्या वही प्यार जिंदगी ले भी सकता है।

तेरी यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

बैठे चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल जमाने में, दिया जलाने लगे थे घर जला बैठे।

होता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई